0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. आज 22 जून 2026 की शाम घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब वक्त है दिन भर की खबरों और अहम अपडेट्स पर नजर डालने का. मैं हूं आपकी होस्ट भव्या पांडे और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और बुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ

काम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ रहे सभी श्रोता जो कि SBS हिंदी पर आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहेंगे। मैं हूं भव्या पांडे और अगले एक घंटे तक हमारा साथ बना रहेगा जहां पर आपके लिए लेकर आऊंगी कुछ खबरें, कहानियां, विचार और बेहतरीन से गाने। तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर HS एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के पहुंचने के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खास जोखिम नहीं बना हुआ है, तो इसी पर आज विस्तार से और जानकारी लेंगे। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। कौन है ये आपको जल्द बताऊंगी और इस बातचीत का पहला भाग आज आप तक लेकर आऊंगी। इसके अलावा कार्यक्रम में आगे बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हाल के महीने में ऑस्ट्रेलिया में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है यानी एंटी सेमिटिज्म। सार्वजनिक सुनवाई में गवाहों की गवाही का पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन इस बहस के बीच बच्चों और युवाओं के मन में कौन से सवाल उठ रहे हैं और परिवार इन सवालों का जवाब कैसे दे रहे हैं यही आज जानेंगे और साथ ही भारत से कुछ खबरें भी आप तक लेकर आऊंगी। साथ ही आपको बता दूं कि संगीत का सिलसिला भी पूरे घंटे जारी रहेगा और कोई भी मनपसंद गाना यदि आप सुनना चाहते हैं तो बता सकते हैं मुझे, नंबर है 04397997। चलिए अब आपको आज का सवाल भी बता देती हूँ। तो दोस्तों हाल ही में मैंने देखी कॉकटेल 2 जो कि बहुत ही चर्चा में थी क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट था कॉकटेल वो बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आया था, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: के बीच हुई अहम बातचीत पर अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत का पहला दौर समाप्त हो गया है और दोनों पक्ष तकनीकी स्तर की वार्ताएं जारी रखने पर सहमत हुए हैं। ये एक आमने सामने की बैठक थी जो मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रही। दोनों पक्ष मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बातचीत आसान नहीं रही। प्रमुख मुद्दों में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत, उसकी जमी हुई संपत्तियों की वापसी और लेबनान के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं शामिल रहीं, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब चलते हैं यूरोप की ओर। रूस का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में क्रीमिया में 4 लोगों की मौत हुई है और 28 लोग घायल हुए हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में एक तेल परिवहन सुविधा पर हमले की पुष्टि की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब यूक्रेन रूस की ऊर्जा आपूर्ति को निशाना बनाकर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। रिचर्ड माल्स ने कहा है कि देश H5 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि देश में इसका पहला मामला सामने आया है। ये मामला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ब्राउन स्कुआ समुद्री पक्षी में पाया गया है, जिसकी आइसोलेशन के दौरान मौत हो गई। ऐसे में सरकार का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और आम जनता के लिए जोखिम बेहद कम है, लेकिन निगरानी और रोकथाम के कदम लगातार जारी हैं। आइए बात करते हैं एक आर्थिक अपडेट पर। ईंधन पर राहत एक और महीने तक जारी रहेगी, लेकिन इस बार कम दर पर। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने घोषणा की है कि फ्यूल एक्साइज रिलीफ को 32 सेंट से घटाकर 16 सेंट कर दिया जाएगा। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ संभावित शांति समझौते की बात कर रहे हैं, हालांकि तेहरान की ओर से अभी भी सतर्क रुख अपनाया गया है। NRMA के प्रवक्ता पीटर खोरी का कहना है कि इस फैसले का वैश्विक ईंधन कीमतों पर तत्काल कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि एक्साइज में कटौती से कुछ सड़क परियोजनाओं में देरी हो सकती है। ग्रीन्स की विदेश मामलों की प्रवक्ता डेविड श्रूब्रिज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये कदम महंगाई से राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है और विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पेन ने वर्ल्ड कप में केप वर्डे के खिलाफ हुए चौंकाने वाले ड्रॉ के बाद जोरदार वापसी की है और सऊदी अरब को 4-0 से हरा दिया है। अटलांटा में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन के सेंटर फॉरवर्ड माइकल ओयारजबल ने पहले हाफ में 2 शानदार गोल दागे, जिससे स्पेन ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली और एक मजबूत जीत दर्ज की। बात करें भारत की, तो महाराष्ट्र में हुए MLC चुनावों में नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट हो गए हैं। 17 सीटों में से 16 सीटों पर सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना और NCP ने जीत हासिल की है। इसमें से 1 सीट विपक्ष को मिली है। नतीजों में महायुति की बड़ी जीत हुई है। वहीं नासिक सीट पर BJP के बागी ने एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार का खेल बिगाड़ दिया और नासिक में उनके कैंडिडेट नरेंद्र दराडे को निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते से हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश और आइए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू की। तो ऑस्ट्रेलिया में HS एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के मेनलैंड तक पहुंचने के बाद से लेकर वैज्ञानिकों और संबंधित एजेंसियों की निगरानी अब जारी है। हालांकि अभी हालात गंभीर नहीं माने जा रहे हैं और सरकार इसे फैलने से रोकने के लिए अपना पूरा काम कर रही है। तो आइए सुनते हैं इसी पर ये बड़ी खबर नबील हसन के साथ।
6: अधिकारियों ने पुष्टि की है कि

0: ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड पर H5 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। ये वायरस एक जंगली प्रवासी समुद्री पक्षी यानी माइग्रेटरी सी बर्ड में पाया गया, जो पर्थ के दक्षिण में स्थित एस्पेरांस के एक दूर दराज समुद्र तट पर बीमार अवस्था में मिला था और बाद में उसकी मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस वायरस के देश में पहुंचने की आशंका पहले से थी और वो उसके लिए तैयारियां कर रहे थे। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। ये मामला एक ब्राउन स्कुआ पक्षी से शुरू हुआ, जो पर्थ से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित एस्पेरांस के पास एक दूर दराज समुद्र तट पर 14 जून रविवार को मिला था। बाद में इस पक्षी की मौत हो गई। फेडरल कृषि मंत्री जूली कॉलिन्स ने बताया कि विक्टोरिया के शहर जीलोंग स्थित CSIRO प्रयोगशाला में की गई जांच से अब ये स्पष्ट हो गया है कि पक्षी किस प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त था।
1: Testing at CSIRO's Center for Disease Preparedness has confirmed the H5 high pathogenic avian influenza or bird flu in a brown skua in Western Australia.
0: ये केस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सामने आया है और ये पहली बार है जब H5 स्ट्रेन ऑस्ट्रेलिया की मेनलैंड तक पहुंचा है। इससे पहले इसे अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के सब अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित हर्ड आइलैंड पर पाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ टैस्मानिया के इंस्टीट्यूट फॉर मरीन एंड अंटार्कटिक स्टडीज की सी बर्ड रिसर्चर डॉक्टर लॉरेन रोमैन का कहना है कि ये पूरी तरह से बुरी खबर नहीं है।
2: I think what's really positive about this detection is that the messaging that Wildlife Health Australia and the Australian government has put out there, so that wildlife carers have been aware for quite a few years now of the possibility of this particular strain of bird flu reaching Australia. So even though I wasn't involved in this particular case, it's a great sign that the wildlife carers, by the sound of it, knew what to look out for, and then when the first detection did occur, they were prepared and took the appropriate measures.
0: Dr. Roman का कहना है कि अभी ये साफ नहीं है कि ये मामला किसी बड़े आउटब्रेक की शुरुआत है या नहीं। फिलहाल विशेषज्ञ इसे इनकर्जन यानी किसी चीज का किसी क्षेत्र में पहली बार प्रवेश मान रहे हैं, जबकि आउटब्रेक का मतलब होता है कि किसी बीमारी का अचानक फैलना और मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होना। न्यू साउथ वेल्स की एनवायरनमेंट मिनिस्टर पेनी शार्प का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये वायरस किसी समय राज्य तक भी पहुंच सकता है।
3: We obviously hope that it doesn't come here, but birds fly a long way and we can't put them in cages. We're expecting that we may see it here.
0: लेकिन फेडरल एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जूली कॉलिन्स का कहना है कि मौजूदा स्थिति बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है।
1: Whilst disappointing, this is not unexpected, given the global spread of the H5 bird flu virus. I can confirm that there's still no evidence of any mass mortalities at this time, nor is there any evidence of infection in any poultry.
0: फिर भी H5 स्ट्रेन के आने से वैज्ञानिकों, संरक्षणकर्ताओं और कृषि से जुड़े समूहों में चिंता बढ़ गई है। जब H5 स्ट्रेन हर्ड आइलैंड पर पाया गया था, तब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि सब अंटार्कटिक क्षेत्र में लगभग 14,000 सदर्न एलिफेंट सील के बच्चे इस बीमारी से मर गए थे। ये कुल आबादी लगभग 17,000 से अधिक थी। डॉक्टर रोमन का कहना है कि विदेशों में हुए आउटब्रेक्स में बड़े पैमाने पर जानवरों की मौतें और किसी प्रजाति की आबादी में भारी गिरावट जैसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।
2: Sea lions have been particularly hard hit across many, many countries, as well as in the sub-Antarctic. So this is a real concern if it does get into sea lions in Australia, which is, it's a possibility if we get outbreaks in the country. It's also hit surface nesting seabirds really heavily as well. So birds like pelicans, cormorants, boobies, gannets, terns, these sorts of species have seen mass mortalities. So in some countries you've had hundreds of thousands of birds dying over a space of months.
0: Federal minister aise halaat ko rokne ke liye puri koshish kar rahe hain. Julie Collins ka kehna hai ki federal sarkar ne pehle se hi 100 se adhik yojnaen taiyar kar rakhi hain jo mahatvapurn prakritik kshetron aur samvedanshil prajatiyon ki suraksha ke liye banayi gayi hain. New South Wales mein minister Sharp ka kehna hai ki har star par adhikari pehle se मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस वायरस से निपटा जा सके।
3: Both federal and state governments have been preparing for this. Literally had some emergency practice preparations even just a couple of months ago in relation to this. So all of those activation plans have been put in place. We're working really carefully with the federal government.
0: इस बीच अन्य विशेषज्ञ मानव स्वास्थ्य पर इसके असर को लेकर लोगों की चिंता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट संजय सनानिगी का कहना है कि लोगों को चिंता करने की जरूरत

0: نہیں ہے، خاص کر اگر سرکار اس ٹرین کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھاتی ہے۔
1: From a human point of view, we have seen a few cases, but it's not easy for a human being to get this. It's typically from infected poultry to humans. In the US, we've seen it go from cattle to humans as well. But human cases with this particular strain of bird flu are not common, and the most cases tend to be mild.
0: ایس بی ایس نیوز کے ڈیبرا گروڑ کی یہ رپورٹ ایس بی ایس ہندی پر آپ کے لیے پرستت کی نبیل حسن نے۔
2: تو دوستوں، یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا، لوٹ کر سنیں گے بھارت سے خبریں اور آج کے کاریکرم کو آگے بڑھائیں گے۔ سنتے رہیں ایس بی ایس ہندی۔
3: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
4: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
5: Yay, yay!
6: SBS Audio.
7: اپنے من پسند آڈیو کو سننے کے لیے پلے دباؤ۔
8: یہی چاہتا تھا یار، چن بھی حال میں
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
13: Far from the partisan politics.
14: 60 se adhik bhashaon mein samachar ke sath aapke mood se mel khane wala sangeet aur manoram podcast aapka intezar kar rahe hain. SBS Audio app download kare ya fir
15: sbs.com.au/audio.
2: تو دوستوں، ایس پی ایس ہندی کے کاریکرم پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے، جہاں آپ جڑے ہوئے ہیں میرے یعنی بھویا پانڈے کے ساتھ۔ آپ کو بتا دوں کہ وقت ہو رہا ہے 5:16، اور یدی آپ آج کے کاریکرم میں میرے ساتھ ذرا دیری سے ابھی ابھی جڑ رہے ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ آپ ایس پی ایس ہندی کی جو ویب سائٹ ہے یعنی sbs.com.au/hindi اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پر جا کر یہ سبھی خبریں اور پروگرام پھر سے سن سکتے ہیں۔ اور یدی آپ نے ہمیں اب تک انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیں اور فالو کر لیں، کیونکہ وہاں پر ہم آسٹریلیا اور وشو بھر کی جو مہتوپورن خبریں ہوتی ہیں وہ ایک الگ انداز میں آپ تک لے کر آ رہے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو آج کا سوال بتا دیتی ہوں۔ آج میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی فلم بتائیے جس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ تو آپ کو بہت پسند آیا ہو، لیکن اتنی امیدوں کے ساتھ جب آپ تھیٹر میں گئے اور آپ نے اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھا تو آپ کو اتنا مزہ نہیں آیا۔ بھیجے اپنے جواب مجھے 0439799767 پر، اور جب تک آپ کے سندیش میرے پاس آ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں بھارت کی خبریں۔
16: स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। रविवार को लगभग 22 लाख विद्यार्थियों ने भारत भर में बहुचर्चित नेशनल एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट यानी नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा दी। भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों के 5,440 एग्जाम सेंटर्स पर यह परीक्षा संपन्न हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक पेपर लीक से बचने के लिए पूरे देश के एग्जाम सेंटर्स पर 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे। पेपर लीक रोकने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया। भारतीय वायुसेना ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बच्चों को बिना किसी डर और तनाव के परीक्षा देनी चाहिए।
5: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा, ये अटूट भरोसा बना रहिए, मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा।
16: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए मोदी सरकार से पुख्ता इंतजाम करने का आग्रह किया।
9: टू एवरीबॉडी टेकिंग द रीनीट एग्जाम, होप यू हैव अ रियली वंडरफुल एक्सीलेंट एग्जाम एंड यू ऑल डू रियली रियली वेल। रिमेंबर वी आर विद यू, वी वांट टू लुक आफ्टर यू, प्रोटेक्ट यू एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ ब्रिलियंट फ्यूचर। लव ऑल ऑफ यू। To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please, please, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again. All the best. Thank you very much. Love you again.
16: लेकिन रविवार सुबह की शुरुआत हैदराबाद में 19 साल की एक नीट छात्रा द्वारा आत्महत्या की बुरी खबर से हुई। परीक्षा के बाद जहां एक और छात्रों और अभिभावकों ने कड़े सुरक्षा इंतजामों पर संतुष्टि जताई, वहीं दूसरी ओर फिर से पेपर लीक होने का डर भी जाहिर किया। बहरहाल अभी तक पेपर लीक होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले यह परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया था। सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में अब तक 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि लगभग 1.5 दर्जन छात्र छात्राएं खुदकुशी कर चुके हैं। इस बीच नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा। सीजेपी ने शनिवार सुबह प्रदर्शन शुरू किया था और उसे शाम 5 बजे तक ही इसकी अनुमति थी, लेकिन संस्थापक अभिजीत दीप के समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी रविवार को भी वहां मौजूद रहे। हैरानी की बात यह रही कि दिल्ली पुलिस उनसे धैर्यपूर्वक

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: सीधे प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करते नजर आए।
2: अभी तक हम ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इज एन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर, बट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप उनको सैक नहीं करते हैं, अगर आप उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं, तो आपसे बड़ा इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री की इतिहास में कोई नहीं है।
1: अयोध्या राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए से अधिक की कथित चोरी पर विपक्षी पार्टियों और आम जनता का कोप झेल रही भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आज सौंपी जा सकती है। चढ़ावे और गहनों की चोरी, जिसमें रामलला के गले का हार और कई अन्य आभूषण शामिल है, की जाँच कर रही SIT ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, व्यवस्थापक गोपाल राव, संस्थापक सदस्य अनिल मिश्रा, चंपत राय के करीबी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और गोपाल राव के रिश्तेदार सोमेश आनंद को अयोध्या छोड़कर न जाने की चेतावनी दी है। चढ़ावा चोरी मामले में 5 लोगों की निशानदेही पर अभी तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई है। SIT के रडार में कुल 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 25 पर कार्यवाही के आसार हैं। मुख्यमंत्री के यह कहने के बावजूद कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चोरी की इस खबर के बाद से राम मंदिर में रोज के चढ़ावे में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमी आई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा भारत के धार्मिक स्थलों के बारे में की गई टिप्पणियों को भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति जरदारी ने शनिवार को ट्वीट के माध्यम से भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों, जिनमें वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा भी शामिल है, को गिराए जाने को लेकर और मुसलमानों को दी जा रही धमकियों पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने भारत को ऐसी कार्यवाहियां तुरंत रोकने को कहते हुए चेतावनी दी थी कि इससे भारत के टूटने और वहां हमेशा के लिए अराजकता फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने ऐसी कार्रवाइयों को तुरंत रोकने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व साझा सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करने की अपील भी की थी। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के माध्यम से कहा कि राष्ट्रपति जरदारी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, ये टिप्पणियां इसलिए भी बेतुकी हैं क्योंकि मानव अधिकारों के मामले में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड बहुत खराब है, जिस पर दुनिया भर में चर्चा होती रही है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि अलग अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने और उनका उत्पीड़न करने का पाकिस्तान का इतिहास लंबा और जगजाहिर है। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है। FATF को दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली सबसे अहम संस्थाओं में से एक माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह नियुक्ति आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति और वैश्विक स्तर पर आतंकियों की फंडिंग रोकने के प्रयासों को और मजबूती देगी। 1994 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल फिलहाल संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। भारत में, खास तौर से उत्तर भारत में, शहरों के फुटपाथ के घिरे होने से लोगों को चलने में अक्सर परेशानी होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को सभी सड़कों के फुटपाथ को चिन्हित कर खाली करवाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चांदुरकर की पीठ ने एक 5 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि संविधान के भाग 3 के अनुसार चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह मोटर वाले वाहनों की आवाजाही से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रविवार 21 जून को भारत और दुनिया भर के कई देशों में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल की

0: राजधानी कोलकाता में योग दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां ऐतिहासिक रेड रोड पर हजारों लोगों ने योग किया। इस बार के योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी बढ़ती उम्र के लिए योग था, जिसका मकसद यह बताना था कि योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं बल्कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर, मन और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने का तरीका है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 साल की उम्र में 20 साल की उम्र से ज्यादा लचीले होना, 50 साल की उम्र में 30 साल से अधिक ऊर्जावान और 70 साल की उम्र में 50 साल से ज्यादा स्वस्थ रहना होना चाहिए। योग दिवस पर फौजी जवानों ने पहाड़ों, रेगिस्तान और समुद्री पोतों पर, बच्चों ने स्विमिंग पूल में, फिल्मी सितारों ने मुंबई के आजाद मैदान में और बंगाल के जल्दापाड़ा वन विभाग कर्मचारियों ने हाथियों पर आसन कर लोगों को योग के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये हमने सुनी खबरें भारत से, और यहाँ पर वैसे तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सोच रही हूँ कि ब्रेक से पहले आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाया जाए। तब तक आप मुझे 04397997667 पर बताएं कि आज की शाम यानी मंडे की शाम आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ SBS हिंदी पर।

तो दोस्तों यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बता दूं कि आज की शाम का पहला संदेश मुझे आया है हिमेश पांचाल जी की ओर से, जो कि बता रहे हैं कि गदर जो मूवी थी वो उनको बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जो गदर 2 आई थी वो इतनी कोई खास उनको इम्प्रेसिव नहीं लगी। और यही था आज के मेरे सवाल का जवाब। आप भी मुझे बताएं कोई ऐसी मूवी जिसका पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ही बढ़िया लगा लेकिन सेकेंड पार्ट इतना अच्छा नहीं लगा। नंबर है 04397997667। और हिमेश जी आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आगे कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहेंगे।

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: कैसे देखती हैं और इसे कैसे मजबूत बना रही हैं। आपको बता दूं कि ये जो बातचीत है ये दो भागों में है और इसका पहला भाग हम आपको आज सुना रहे हैं, दूसरा भाग कल के कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिलहाल सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
3: नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन क्या दोनों देशों के निवेशक एक दूसरे के कारोबारी माहौल और अवसरों को पूरी तरह समझते हैं? क्या उनकी धारणाएं और अपेक्षाएं वास्तविक परिस्थितियों से मेल खाती हैं? इस अंश में हम आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से करा रहे हैं जो क्वींसलैंड में रहती हैं। जैस्मिन बत्रा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की मजबूत समर्थक रही हैं। उन्होंने कई बिजनेस एक्सेलरेटर कार्यक्रमों में प्रमुख मेंटोर के रूप में काम किया है और उभरते हुए एंटरप्रेन्योर तथा बिजनेस लीडर्स को अपने व्यवसाय को विकसित करने और विस्तार देने में मार्गदर्शन प्रदान किया है। आपको बता दें ये अंश हम आपको दो भागों में सुनाएंगे, सुनिए इसका पहला भाग। सबसे पहले जैस्मिन, आपका SBS हिंदी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बिजनेस सेंस है उसमें कितना बड़ा गैप है, कितनी कमी है दोनों निवेशकों को एक दूसरे के बारे में समझने में?
4: अभी बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है दोनों तरफ। पिछले 3 सालों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है कि लोग समझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में कि इंडिया की टेक्नोलॉजी राइज के बारे में। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है ये लोग समझते हैं, बट उस पॉपुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक वन साइज फिट्स ऑल तरीका नहीं है। दैट इज

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay, yay!
3: जी. एक तो इंडिया इतनी ओवरवेलमिंग लगती है उनको कि उनकी कहाँ से शुरू करें, किससे बात करें, कौन सी सिटी में अपना पहला कदम रखें. वो डिसीशन मेकिंग, उसमें क्लैरिटी उनको देना, ये ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाने में बहुत मायने रखता है. जब इंडिया से कोई कंपनी ऑस्ट्रेलिया आती है तो किस सेक्टर में यहाँ पर ओवरलैप है, किस सेक्टर में उनका सबसे उनको जिसमें गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बहुत सारे नए टैरिफ्स हैं, बहुत सारे ग्रांट्स हैं, तो वो उनको समझाना कि कहाँ पर गैप है, जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो उस अवेयरनेस के बारे में अभी भी बहुत काम बाकी है.
4: जी, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला प्रश्न होता है कि कैपिटल रेज कहाँ से किया जा सके, पैसा कहाँ से लाया जा सके. तो ये बताइए कि आपका सुझाव, सबसे पहला कॉल किसे किया जा सके जो ऑस्ट्रेलिया से भारत में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रहेगा?
3: हमारी ये रिकमेंडेशन हमेशा रहती है कि आप दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपनी डोमेस्टिक कंट्री में वैलिडेशन, कस्टमर्स, कैपिटल रेज वहाँ करो, क्योंकि वो जहाँ आप समझते हो
4: जी.
3: उसके बाद ये सोचना कि ये जिस तरह चलता है सीधा वैसे ही दूसरी जगह अप्लाई हो जाएगा, वो नहीं होगा. कैपिटल रेजिंग अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है क्रॉस बॉर्डर बिजनेस में. तो हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि पहले आप अपनी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक लेवल पे स्केल करो, और जब आपने वो करा तो उस कैपिटल से आपके इन्वेस्टर्स जब ये देखें कि अच्छा आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप इंडिया जाना चाहते हो जो बड़ी मार्केट है, तो वो अपने आप आपका बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो नया कैपिटल रेज करना आसान होता है. तो हमारा उनके को यही इनकरेजमेंट रहता है कि नई मार्केट को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, और कुछ गलत डिसीशंस बहुत जल्दी बिजनेस को बैक ले जाते हैं. अगर आपको एक कम्युनिटी ऑफ फाउंडर्स मिलती है, जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स प्रोग्राम के हैं वो कहते हैं कि उनके लिए सबसे वैल्यूबल चीज है दूसरे लोग जो उसी जर्नी में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जा रहे हैं, उनके साथ जब वो बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके एप्रिहेंशन समझते हैं, तो उनको वो चीज कोई इंटरनेट में गूगल करके नहीं मिल सकती, वो सिर्फ लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए साथ ही मिलती है, और हमारा प्रोग्राम वो एक कम्युनिटी बनाता है.
4: तो जैसा आप बता रही हैं जैस्मिन, आप इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, इस गैप को कम करने में लोगों की मदद कर रही हैं, तो ऐसा इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं, आपको किस चीज ने मोटिवेट किया ये काम शुरू करने के लिए?
3: जब मैंने बिग लीप शुरू करा, इट वॉज वो शुरू हुआ इस गैप को देख के कि बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन कंपनीज जो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी बना रही हैं, वो यूएसए या यूके जाना चाहती हैं टू एक्सपैंड, और मुझे वो गैप दिख रहा था कि इंडिया के बारे में अभी भी बहुत कम अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन बहुत स्केची है, लोग पूरी तरह समझ नहीं पा रहे कि वहाँ पर क्या राइज है टेक्नोलॉजी की. इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी ऑस्ट्रेलिया में इतना उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी. उस दैट वाज मेरा रीजन टू लॉन्च बिग लीप. तो ये प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है जो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए, उसको समझने के लिए और वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी पहुँचाने के लिए है. हमने कुछ टाइम ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को इंडिया लेके गए, और बहुत ही जल्दी ये समझ में आ गया कि इंडियन कंपनीज के लिए जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया में भी काफी एप्लीकेशन है. तो अब ये क्रॉस बॉर्डर दोनों तरफ चलता है. हम ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को इंडिया मार्केट के बारे में बताते हैं, पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उनको वहां लेके जाते हैं डिफरेंट सिटीज में, और उसी तरह हम

0: इंडियन कंपनीज को ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं, प्रिपेयर करते हैं और फिर उनको ऑस्ट्रेलिया में लेके आते हैं।
1: तो ये था इस अंश का पहला भाग। दूसरा भाग सुनने के लिए बने रहें SBS हिंदी के साथ, और ये पूरा पॉडकास्ट आप SBS हिंदी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं।
2: तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आई थी नताशा कॉल, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा भाग जो होगा वो हम कल के कार्यक्रम में आप तक लेकर आएंगे। चलिए आपको बता दूं कि आज मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया हो लेकिन दूसरे पार्ट से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करके घर आए हो। तो इस पर मुझे संदेश आया है, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं, हाय SBS टीम, इनको हाउसफुल 1 बहुत अच्छी लगी थी लेकिन उसके बाद जो उसके पार्ट्स आए हैं इतने कुछ खास नहीं लगे हैं। नाम इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन अपनी मूवी बता दी है, और कहीं ना कहीं मैं इनकी बात से अग्री करती हूँ। ऐसी कई सारी फिल्म्स हैं जिसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। जैसे अगर आपने नई वाली गोलमाल देखी हो तो बहुत ही कमाल की, वो एक ट्रायोलॉजी बनाने की उन्होंने कोशिश की लेकिन पहली वाली जितनी कमाल की थी बाकी की फिल्मों में इतना मजा नहीं आया। इसके अलावा एक और संदेश मुझे पीयूष जी ने भेजा है, उन्होंने भी गदर का नाम लिया है कि गदर वॉज बेटर और गदर 2 उन्हें इतनी पसंद नहीं आई है। इसके अलावा हिमलता पुरोहित जी का संदेश आ गया है, नमस्ते भव्या जी एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम। तो ये सभी संदेश मेरे पास अब तक आ गए हैं, और आप भी मुझे 04397997667 पर बताएं कि आज की शाम आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तब तक लेते हैं आज की शाम का आखिरी ब्रेक और फिर लौटकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी।
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. और अब बात करते हैं एंटी सेमिटिज्म की. तो ऑस्ट्रेलिया में एंटी सेमिटिज्म के अपने अनुभवों के बारे में गवाहों से गवाही का पहला हिस्सा सुना जा चुका है. हर उम्र के बच्चों के मन में एंटी सेमिटिज्म के बारे में सवाल होते हैं. SBS एग्जामिन्स के इस अंश में बात इसी विषय पर, और इस अंश को आज आप तक लेकर आ रही हैं अनीता बराज.
5: एंटी सेमिटिज्म और सोशल कोएलिशन पर रॉयल कमीशन का काम चल रहा है. इससे पहले ही हजारों सबमिशन मिल चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया में एंटी सेमिटिज्म के अपने अनुभवों के बारे में गवाहों से गवाही का पहला हिस्सा सुना जा चुका है.
6: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
5: यहूदी स्कूलों और डे केयर सेंटर्स में आगजनी और ग्रेफिटीज के मामले, यहूदी बच्चों के साथ गाली गलौज और सिक्के फेंकना, स्कूल असाइनमेंट में क्लासमेट्स का नाजी सिंबल बनाना, नाजी सलूट करना. अमेंडा गार्डन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने SBS एग्जामिन्स को बताया कि सलाह के लिए उनके पास आने वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है.
7: Children are coming in with questions though, like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
5: इस सप्ताह SBS एग्जामिन्स में हम पूछ रहे हैं कि हमें बच्चों से एंटी सेमिटिज्म के बारे में कैसे बात करनी चाहिए. और SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार.
7: Children of different ages need different responses, and it's really important not to lump them all in together for so many reasons.
5: Amanda Gordon ने कहा कि छोटे बच्चों को सुरक्षित, emotionally controlled और वो जैसे हैं उस पर गर्व महसूस कराने की मदद की जानी चाहिए. सभी बच्चों के लिए diversity की value सीखना आवश्यक है.
7: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
5: Olga Ventrop Alhaya, एक early childhood teacher और early childhood centers के लिए compliance advisor हैं. उन्होंने कहा कि जब छोटे बच्चों के मन में एंटी सेमिटिज्म के बारे में सवाल होते हैं, तो ये आवश्यक है कि उनसे दूर नहीं हटें.
8: If the child asks you, that means the child noticed that, and this is something important to address. You don't need to provide some political explanations, but you can talk about fairness, the being kind, the being respectful, and that can be taught when the children are very young.
5: ये कुछ ऐसा है जिसका उदाहरण उन्हें हाल ही में अपने बच्चों के सामने भी अपनाना पड़ा है.
8: My friend's daughter was killed in the Bondi attack, and we went to Bondi Beach 1 week afterwards, and we participated in the event. My children came with me, so they saw me actually standing in solidarity with the community. So I think it also affects them. They see how their parents behave and what they do.

0: I think that there's a lot of misinformation out there. I think that social media really feeds into that misinformation. And I think that if we can provide a really positive experience for people and a happy experience and something that really enlightens them and provides that education, you can't go wrong.
1: Rabiul Man ne kaha ki ekjut samaj ke taur par aage badhne ka rasta sabke beech pyar aur samman se hokar jata hai.
2: There are values that we all can agree on. If we can just meet up face to face with each other and not be keyboard warriors and actually start having those conversations about what are our commonalities, what actually brings us together as human beings, and I believe that we can do that.
1: SBS Examines ke liye Lera Schwitz aur Dennis Feng ke is episode ko SBS Hindi ke liye prastut kiya Anita Barar ne. Adhik jankari ke liye www.sbs.com.au/examines par jayen.
3: तो दोस्तों इस अंश को आप तक लेकर आई थी अनीता बरार और सोच रही हूँ कि आज आपको कुछ बढ़िया से गाने सुना दिए जाएं जाने से पहले. तो ये है मेरी एक बहुत ही फेवरेट फिल्म का गाना जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों मुझे बहुत पसंद आया था. आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो फिल्म है जिसका पहला पार्ट लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन दूसरा वाला इतना नहीं भाता. और कुछ और संदेश मुझे आए हैं. इन्होंने नाम नहीं लिखा है और फिल्म भी शायद नहीं बताई है लेकिन कह रहे हैं बोथ पार्ट्स आर गुड बट द फर्स्ट वन हैज मोर क्रिएटिविटी. संदेश आया है पानव जी की ओर से. तो पता नहीं कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं. हो सकता है एक और संदेश अगर ये भेज दें तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी फिल्म के बारे में ये बात कर रहे हैं. इसके अलावा मुझे एक संदेश आया है पीयूष जी का जिन्होंने अपनी थोड़ी सी नाराजगी हमारे सामने रखी है. बता रहे हैं कि जब भी ये कोई गाना रिक्वेस्ट करते हैं तो अक्सर इनका जो गाना होता है वो हम उसी दिन उस शो में नहीं बजा पाते हैं. तो आपने अपनी बात कही है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले अपने थर्सडे के शो में आप सभी के जो रिक्वेस्टेड गाने हैं वो मैं बजा सकूं. और आप इसी तरह से अपने जो सजेशंस हैं वो हमारे पास भेजते रहिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो श्रोता हैं हमारी जो ऑडियंस है वो आखिर चाह क्या रही है और उस हिसाब से हम आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा करें जिससे कि आप लोगों को वो मिलता रहे जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं. आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए आप ये बढ़िया सा गाना एंजॉय करें. तो दोस्तों पनव जी जिस फिल्म की बात कर रहे थे उन्होंने मुझे बता दिया है मुन्ना भाई MBBS. बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है ये. और हाँ मेरा भी यही मानना है कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो तो बिल्कुल ही आइकॉनिक था और सेकंड वाला काफी लोगों को हो सकता है इतना अच्छा ना लगा हो. इसके अलावा एक और संदेश मुझे आया है विक्रम बड़वाल जी का जो कि लिखते हैं नमस्कार भव्या जी नमस्ते और बता रहे हैं कि पुष्पा 1 इनको बहुत अच्छी लगी थी लेकिन पुष्पा 2 इनको बस शो और लगा था और कुछ खास पसंद नहीं आई. तो काफी लोगों का ये कहना है और इस तरह की जो ओपिनियंस होते हैं वो काफी लोगों के होते हैं क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जो फिल्म का फर्स्ट पार्ट होता है वो बहुत बढ़िया होता है और सेकंड इतना अच्छा नहीं होता है. खैर आपको बता दूं कि आने वाले समय में कुछ ऐसी बहुत ही आइकॉनिक फिल्म्स हैं जिनका सेकंड पार्ट आने वाला है. धमाल का सेकंड पार्ट आने वाला है और वेलकम जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फिल्म है उसका वेलकम टू द जंगल एक पार्ट आ रहा है जो कि बिल्कुल वैसी तो नहीं है लेकिन उसी से इंस्पायर्ड है. इन दोनों फिल्म्स के ट्रेलर्स आ चुके हैं आप जरूर देखें और बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये जो फिल्म्स हैं ये अपनी फर्स्ट फिल्म जितनी ही पॉपुलर और मजेदार होंगी. इसी के साथ आपसे आज के लिए इजाजत लेना चाहूंगी. आप सभी के संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी चैनल पर और खूब सारे गाने आपके लिए लेकर आऊंगी और वो गाने आप ही के रिक्वेस्टेड गाने होंगे. तब तक आप बने रहें SBS हिंदी के साथ हमारे साथ.

0: क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली सेटल होने की सोच नाल नहीं आई सी। मेरा प्लान सिर्फ 2 साल लिए आना सीगा, ग्लोबल एक्सपीरियंस हासिल करना सी, दुनिया के वक् वक् बिजनेस प्रैक्टिसेस नु समझना सीगा, ते फिर इंडिया वापस जाना सीगा। पर कई बार जिंदगी साडे प्लान्स तो भी वड्डे प्लान्स बना के रखती है, ते ऑस्ट्रेलिया आके मैनु सिर्फ एक नवा देश नहीं मिलिया, मैनु एक ग्लोबल परस्पेक्टिव मिलिया। मैं वक् वक् इंडस्ट्रीज, कल्चर्स ते बैकग्राउंड के लोगों नाल काम किया। मैं देखिया कि इनोवेशन, कोलैबोरेशन ते डाइवर्सिटी किस तरह नवे आइडियाज ते नवे अपॉर्चुनिटीज पैदा करते ने। तो 2 साल का सफर हौले हौले करके एक लंबे सफर विच बदल गया, ते हुण 18 साल हो गए।
1: जी
0: पर जे मैं पूरे सफर नो सब तो वड्डी सिक्ख्या जे तुसी कहंदे एक लाइन ते करा, ते वो हैगी है कि आई फील कि जिहड़ी ग्रोथ हैगी है तो साडी वो तां शुरू होंदी है जदों असी अपने कंफर्ट जोन तो बाहर आने हां।
1: जी
0: ते शायद यही माइग्रेशन की सब तो वड्डी खूबसूरती है कि तुसी सिर्फ एक नवे शहर देश विच नहीं जानते, तुसी अपनी समर्था दे नवे पहलू की भी खोज करते हो।
1: जी और अगर जिवें शुरुआत दी आपां गलबात कीती पटियाला तो ऑस्ट्रेलिया दा सफर, सो तुसी मीडिया संस्थावां दे नाल भी काम कीता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, सो उहदे विच तुहाडी भूमिका की सी अते किवें दा तजुर्बा सी उहनां नाल काम करन दा?
0: जी से टाइम्स ऑफ इंडिया च मैं हेड ऑफ पार्टनरशिप सी, जिहड़ी B2B बिजनेस